देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। ओ राधुनाई

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

से घूम के आए बम्बई पूना झांसी और बताओ क्या क्या लाए। शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं दे

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

आए बम्बई फूलना धरती और बताया क्या क्या लाए। शहर की काली खासी और ये अंग्रेजी फांसी।